0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो का मावेस ही मना ला
4: अमिल्ला फैसा आंधा गें अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहाम वो एक में ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतो के इस्तेमाल करूं गे साबुन दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैम मिलियन वुरे की नमी हु मरुआ कमा ताफासी साब तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा
6: मी अहमद आमिर

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम हुरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ जनांगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: खुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐह मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
2: ए कुड़ो को फाहते जेहिला मा आहार में यहाँ कैरी करती में मी है उन दुगो आने ये ना जा पिन नंबर नो फ्रेंड हिसाब ऐगन ती बेमानी
3: आ को बा मिता हूँ ना डस्टबिन ऐहरी दो मैं वैसे डस्टबिन खान नो लाम मारी
4: दिवे एफएम नो दिहे के मेगाहर्ट्ज दिवेंगे मुनिफु ए फिलवा देनुमुगा अबदुस
5: दिवे एफएम के कुम्मे गडीरे के फैशन मिस दिवे अमिल्ला रागे के लवेकु

0: देखे मैं घर से एफ एम उम्मी गडी का कुरिया में गेंदा एहुन तेरिंगे हो हमें शो एक हर गडी तिरी हा हमें कुरिया ता इरुगा शो का अलिफा मैसेज अन कास्मिक ख्याल देनी अम्मा डे के फरात उन दिफा मैसेज में ख्याल देनी हाय समा किहिने एडवेस गोस दो देवरी आ कमिश्नर कार्ड गोस दो समा मिउलेनी वरा लोबी गोये फेनिगें कुडा कुडा लोबी लोबी मंजे ए कोमे दुवा को मिगे कुरिमतिन नुफरिता गोतका स्कूपीगा दातम फेने एकु जाया जहाल दीबल तुम ही हो मिलवा ओ ओके ओके ए मामडे के फरात तुम ही हो ए आमी अमडे फ्रेंड के मिउले कुचा जहाल देन है नमे से कुरि मि जहाल देने कडिर के फेशुन कम कवा अमिल राकु के लावा
1: दिवे एफएम के कुम्मे गडीरे के फेशुन मिस दिवे अमिल राकी के लावे कुम

0: ही FM, दिव्य हिंडनाक।
1: नोदी है एके मेगाहर्ट्ज, दिव्य ही FM।
2: लवे कफ़ा हो, लवे।

0: बड़ा मनो बुला
1: पूरी सवाल को बा हंदा ने तो नी तो
0: नु हदा गे बहुरी मम्मी हस तो का को तो एक मको फुरतम अहम वाणी मैं हाल दो फिश मेंने ते फिशी सलाम को मिस फिश मिस दो।

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारें कोलम हो रहा फाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ दरांगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: कोद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐहम मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरे बेदाने
2: कमदा फिल्म में गने की हावर का तो ऐसा फिल्म में जवाब की बड़े रंगल गए थे।
3: तीन अकुंदिरी उलेनी खलाया नुला मिथुगा बिंदु के दे निशाना नुला।
2: एमे कमदा फिल्म के एमे खास कम की को बैठो ऐसा फिल्म में जवाब की
4: फिल्म के हुरी हाँ कम है बस।
5: एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू?
2: एमे कमदा फिल्म के मिंबर बनाला टेस्ट का तैयार तो है फिनम को बा जवाब की
4: हे वल्ला तैयार
6: देहा सर्विस वना हर दिवेह फिल्म गे मस्ते
7: मूवी मूड
2: एमने का मुदाफ में गे मेंबर बदल म दिवेह फिल्म गे टीम मेजू हो रही तैयार तेबे फन तैयार तो
7: मूवी मूड

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट।
1: नोदी है एक मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

0: स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट।
1: नोदी है एक मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

0: लिबे एन ऐप बोर्ड मार्क पोल का मैं लिबो नो
1: फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है सो फार मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझे बहुत टैगिंग होती है लोग बहुत ज़्यादा टिकटॉक्स बना रहे हैं और यूट्यूब चैनल पे भी मेरे दूसरे वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं कि वी आर हियर बिकॉज ऑफ खुदा और मोहब्बत एंड स्टफ तो फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है रोज़ आई गेट टू सी समथिंग न्यू कोई वीडियो कोई कोई कवर होता है लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर इस गाने को कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है इट्स रियली नाइस
0: मिलावें लो भी सिफ़ा को देनी दो इब्बकी हिद्दत कम के इम्तिहाने के गोतुका मिहाय साबो मेगेनेस्तेनी हुदार मोहब्बत मिलावा

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।